जिस पर रे वह फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाग के मुग अब्दुबा पाप देम बन्यो कई अमल फी चितू बा इतालिया उस दाला के बाया मोन दिवी उस दाला